0: बात है जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। इस गीत नूं स्पॉन्सर किया जा रहा जगदेव पैरालीगल वालों। जी हाँ, जगदेव पैरालीगल तुहानूं पावर ऑफ अटॉर्नी एफीडेविट बना के दिंदे ने, नोटरी सर्विसिज दिंदे ने और किसी भी तरह के बिजनेस डाकूमेंट्स बनाने ने तो जगदेव पैरालीगल नूं तुसीं कॉल कर सकते हो। एक बार फिर नंबर ले लो, जगदेव पैरालीगल 6478085859। प्रोग्राम पंजाबी लहरां ते मैं हाँ तुहाडा सतिंदर पाल।
1: ਧਰ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀ ਹੇ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

0: वकील ब्रिज मोहन, कॉन्टेक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।

Optical. Remember, जो गोल्डन प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज. जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए. आंखों को चेक करवाने के लिए वहीं पे 905-450 गाइड दी थी पर कॉल कीजिए 905-456-2733. अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस.

वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता का सुंदर स्टैचू ना भूले नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट बॉक्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।

आदिशक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंधम महाघोरम ग्राही माम शरणागतम त्रैलोक्य हृदयम शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता ग्राही माम शरणागतम जिनग्री मंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटी ताम सुरेशानी वंदे त्वं राज गौरवम।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदर।
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट, ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे। कहाँ पे? योगी ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगी ऑटो सेंटर के हैरी को, हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4 905-547-6464। योगी ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगी ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर इस फेस्टिव सीजन में लेके आना चाहते हो, बढ़िया सा टीवी चाहिए आपको, बढ़िया बढ़िया गैजेट किचन में चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देख सकते हो, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल करिए 905-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अब अगर आपने मूव होना है, तो एच के मूवर्स आपके लिए सारे टोरंटो भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं, और साथ साथ ही आपको आपके जो सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एच के मूवर्स 416-524-4165-24-6704 पे आप कॉल कर सकते हो। जी हाँ, तो एच के मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आपको आपने किसी किस्म का कोलिजन का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो अब आपके लिए बहुत वहाँ लंदन में वो रोड पे पहुँच खुल चुके हैं। तो आपने किसी तरह की भी आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। और इसलिए फिर आपने अगर किसी किस्म का भी कोलिजन का काम करवाना है, तो फिर आपके लिए मौजूद है आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो वाले। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है, तो आप के लिए समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आपके लिए करवा चौथ आने वाली है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे अपने ऑर्डर बुक कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हो। तो लेट्स दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये जो पुराना सा गाना है, पुराने वाले गाने जो है ना, उनका जो संगीत है वो एकदम आपके लिए मनमोहक है। तो लीजिए सुनिए, ये भी बड़ा सा प्यारा सा गीत है, जितेंद्र है इसमें, बबीता है इसमें।

हाय को फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165 ਤੇ 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जो लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और अपने कमेंट्स भेजते हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का चाहिए तो आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स जाना होगा। एक लोकेशन उनकी आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी जो फेस्टिवल सीजन स्पेशल हैं वो देख लीजिए। फिर आपको अगर अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने ऑर्डर करना है तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। बढ़िया टीवी आपको चाहिए, बढ़िया किचन गैजेट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए तो ये सारा सामान आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बहुत बढ़िया प्राइस पे टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 0579-9004-5 पे कॉल कीजिए। तो अब आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गोर रोड पे लंदन में खुल चुके हैं। आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में तो आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। तो लेट्स गो टू this beautiful song.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150-01621-3-1165।
1: जी हाँ, अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ, तो आप सुनिएगा जरूर, बहुत ही बढ़िया है, तो आपको जरूर पसंद भी आएगा उम्मीद रखती हूँ। तो आपका जो अभी लॉन्ग वीकेंड है, थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड, उसके लिए आप सभी को लॉन्ग वीकेंड का बहुत बहुत हैप्पी थैंक्सगिविंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को बहुत सारी हैप्पी थैंक्सगिविंग, और हमें जरूर थैंक्सफुल होना है ऊपर वाले का जो भी हमें मिलता है, तो इस तरह से हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं कि जो कुछ भी हमें जिंदगी में मिला है हम उसके लिए सारे यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप जैसे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमें दिए हैं, हम उसके लिए भी यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड थोड़ी ठंड भी हो गई है तो आप थोड़ा ख्याल रखिएगा।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रात को भी हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे हाजिर हो जाएंगे बहुत प्यारे प्यारे गीत लेकर के, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म के भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में आपकी पूरी मदद करते हैं। तो उनको आप कॉल कर सकते हैं 416-524-6704-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको आपने खाना ऑर्डर करना है या लाइव कुकिंग करवानी है तो ये सारा कुछ आपके लिए जो है वो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है क्रेडिट पे और ब्रिटानिया पे। और लाइव कुकिंग आपने करवानी है तो भी आप उनको कॉल कर सकते हैं 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने बढ़िया फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपको वो काम करके देते हैं। तो ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कॉल कर लीजिए, उनके वेबसाइट पे जाइए topchoiceelectronics.com। तो आप किसी तरह की भी आपने ऑर्डर बुक करना है फेस्टिव सीजन के लिए, बढ़िया टीवी लेना है अपने घर में, फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए 905-799-0045 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। ये भी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का है पर बहुत ही रोमांटिक सा है।

0: to say thousands of legal fees, so we can invest back into our small business.
1: किस्म का भी आपको फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है तो आप प्राइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप जाइएगा और आपको बहुत बढ़िया प्राइसेस मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। तो गाना आपका अभी आ रहा है।

गुजरती नहीं जिंदगी बन सहारी, बहुत खो चुके दूर रहकर इशारे, बहुत खो चुके दूर रहकर इशारे, तुझे पास से देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का।

हाँ, तो मोहब्बत की तकदीर में वास यही होता है, आप देख ही सकते हो। आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक। फाइनेंस की चिंता ना करो, तो इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स नहीं फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840। ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ। ਅਬ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੋ ਐਚ ਕੇ ਮੂਵਰਸ ਕੋ ਕਾਲ ਕੀਜੀਏਗਾ, तो उनकी बहुत सारी टीम पहुंचाते हैं, सब जगह ही पहुंचाते हैं। तो आप जरूर वहां पे जाइएगा और आपको बहुत बढ़िया वहां पे सर्विस मिलेगी। तो आज ये बुक कीजिएगा 416-524-804-416-524-6704।

0: में कुमार जादू नगरी आया है कोई जादूगर।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गायत्र सर में। तो हैप्पी थैंक्स गिविंग टू ऑल ऑफ यू, और खूब एंजॉय कीजिएगा और बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम बनाइएगा, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम में जाइएगा। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकले फाटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप। इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके 1,00,000 तक। ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवे टायर की लोड है तो वह भी मिलणगे। 4 टायर का सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकली फाटो हैमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो मैं AM530 तो मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 की सीधी बचत, तो फिर देर किस गल दी। अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकली फाटो हैमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840। बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो आपको गाड़ी लेनी है तो पहुंचिएगा इनके पास, तो बढ़िया बढ़िया आपको गाड़ी मिलेगी, बढ़िया प्राइस में मिलेगी। तो आइए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत। तो आज आपके लिए जो लॉन्ग वीकेंड होता है तो उसमें आपको मौका मिलता है घर के बहुत सारे काम करने का, और जो जिनको कॉल नहीं किया होता है कॉल करने का, तो यूज करिए अपने वीकेंड के टाइम को। तो

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। रात के वो भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे तो 10 से 11 बजे। तब तक के लिए नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सवादा भला। हैव ए सेफ लॉन्ग वीकेंड।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: राजधानी स्वीट एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: GTA दे होम बायर्स मिस ना कर जायो। पैराडाइज डेवलपमेंट्स सेल कर रहे ने टाउन होम अते डीटैच कर मिल्टन, ब्रैम्पटन, सीटन अते विटबी दे विच। कीमत सिर्फ 6,29,990 डॉलर तो ते नाल 1,30,000 डॉलर तक दे डिजाइनर फिनिशेस, HST रीबेट्स अते बहुत वडिया सेविंग्स दा फायदा लो। आज ही विजिट करो paradisedevelopments.com, paradisedevelopments.com।

0: 1230.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Papa, papa, sunte kyun nahi chocolate leni
2: hai? Aji, sunte ho? Kahan gum ho?
3: Arey Mahesh, abhi tak office nahi aaye. Pata nahi meeting thi. Hello, hello, hello.
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज।
5: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो शो रेडियो आवाज द वॉइस जिंदाबाद जिंदाबाद। फॉर एडवर्टाइजिंग प्लीज कॉल 416-518-3200।

ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800, 416-526-6800।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड. फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-910-6000 416-910-6000 और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग.
1: Use multi-factor authentication.
0: Once again, welcome to the program. Swagat hai tuhanu sab da program de vich. Galbaat karan layi number again 416-910-6000. Is number te galbaat kiti ja sakdi hai. Chalo ek khoobsurat jehe geet di taraf tuhanu leke chalde haan. Tuhadi farmaish, tuhadi nazar, tusi geet sunna chaha hai. Aur enjoy karde hai is khoobsurat se geet no. Chandarmaa di चंद की जेकर असी गल करिए बहुत खूबसूरत है चंद्रमा. और जदों स्पेशली पूर्णमाशी होंदी है तो फुल मून जदों होंदा है तो उदों उस दियां वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होंदियां ने. एंड इट रियली अफेक्ट्स आवर लाइफ क्योंकि चंद्रमा नूं एस्ट्रोलॉजिकली मन दे नाल जोड़िया जाता है. मन दे बारे असी सुनिया ही है कि मन जीते जग जीत. मतलब जे तुसी अपने मन नूं जीत लिया तो समझो तुसी दुनिया जीत सकते हो. पर प्रॉब्लम यही है कि मन नूं जीतना सब तो मुश्किल काम है. लेकिन जेकर तुसी कोशिश करते हो तुसी अपने मन नूं स्ट्रोंग रखना चाहते हो तो पानी ज़्यादा पिया करो, पानी दे नज़दीक रहा करो, चांदी ज़्यादा पहनो, तुसी अपने मन नूं स्ट्रोंग कर सकते हो. इट्स वेरी ईजी बट इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट इज़ हार्ड. कई बार असी जिंदगी च रूटीन दे विच चलदे रहने हैं बट वी डोंट थिंक कि जिंदगी च बहुत सारिया परेशानियां आंदियां, बहुत सारिया मुश्किल आंदियां कि कोई रस्ता नज़र नहीं आंदा. तो इहदा मतलब है किसी की कही हुई गल, छोटी जिही गल सानू पिंच कर जांदी है. इहदा मतलब है कि साडे इमोशंस इमबैलेंस है. मैं लास्ट वीक दस्या सी कि अपने इमोशंस नूं बैलेंस करन लई या अपने इमोशंस नूं स्पिरिट नूं हाई करन लई या अपने मन नूं मजबूत करन लई तुसीं एवरी मंडे जेकर चांदी का एक सिक्का अपने पिल्लो के नीचे रख के सोंदे हो तो उहदे नाल जिहड़ी चांदी की एनर्जी है वह तुहाडे मन नाल कनैक्ट होकर तुहाडे माइंड नूं स्ट्रोंग कर सकती है. इस टाइम जो फुल मून हुंदा है तो उस टाइम तुसी पानी ज़्यादा पियो. अजकल तो बहुत ट्रेंडी हो गया है मून वाटर बनाना. चंद्रमा की रोशनी विच तुसी पानी रख दो और सारी रात वह पानी चार्ज हुंदा रहिंदा है. दैन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर. उहदे नाल भी तुहाडा मन जिहड़ा स्ट्रोंग हुंदा है. फिर पुराने जमाने विच तुहानूं याद होएगा कि साडे नानियां दादियां दरखत के उपर चंद्रमा पूर्णमाशी वाले दिन, फुल मून वाले दिन खीर बना के टंग देंदे सी ताकि चंद्रमा की पूरी रोशनी उस खीर के अंदर आ जाए और उस तो बाद उस सारी फैमिली नूं खीर दिती जांदी सी. सो यह भी एक रिचुअल कह सकते हो, ट्रेंड कह सकते हो या फिर अपने मन नूं स्ट्रोंग करन दा एक तरीका कर सकते हो. छोटे छोटे चीज़ां ने बट विदाउट एनी कॉस्ट असी घर दे विच ही इन्हां चीज़ां नूं यूज़ विच लिया के अपनी जिंदगी नूं बेहतर बना सकते हैं, अपने मन नूं स्ट्रोंग बना सकते हैं. होर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुहानूं मिल सकती है रेडियो गोल्ड दे किसी भी प्लेटफॉर्म दे तुसी जाओगे यू विल गैट ऑल द इन्फॉर्मेशन अपनी जिंदगी नूं ते अपने मन नूं किदां बेहतर बनाया जा सकता है. एक खूबसूरत जिहा गीत तुहाडी नज़र. इंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. कहिंदे हैं कि चांद चांद भी क्या हसी सितम ठाता है, चांद भी क्या हंसी सितम ठाता है, बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आता है. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग और प्रोग्राम एसएमडी सुनते रहो 5:30 से 5 to 6 बजे तक रेडियो गोल्ड. आफ्टर द शो नंबर इज 416-910-6000. जस्ट बी रेडी. आप थोड़ी जी एस्ट्रोलॉजिकली गल भी करांगे कि जेकर थोड़े हाथ में दिल है अलग अलग जगह से तो वो की रीजन हो सकते हैं एंड हाउ वी कैन थिंक बेटर ऑन दैट. और मनीबंदी भी गल करांगे जिहड़ी

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बीबी गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत. कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600. वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स. विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर नॉट डीलर्स. यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770.
1: हाय अर्जू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905 4573232. Clear Optical by Varun Kanda.

0: अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 jobs completed, 16 installers team, cover across Ontario, more than 9% in home stars last many years. Windows and door manufacturer, not dealers. Yash Windows and Doors, 416-732-3600 or 416-674-7770. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, ਰਿਨਾਊਂਡ ਨੇਮ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਲਾਈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ देयर इज नो मीडिएटर। मैनुफैक्चरर है और डायरेक्ट मैनुफैक्चरर तो तुहानूं वेरी गुड प्राइस एंड गुड क्वालिटी दे यश विंडोज एंड डोर्स दे उपर जाके तुसीं इनफॉर्मेशन ले सकते हो। यश जी, स्वागत है तुहाडा।
1: थैंक यू वेरी मच। आपको सारे श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ
0: जी, वेलकम। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें प्लीज धर्म जी, यश विंडोज एंड डोर्स के बारे में।
1: यस, विंडोज एंड डोर 2012 से विंडो एंड डोर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। टोरंटो बेस हमारी फैक्ट्री है और अक्रॉस ऑन्टारियो में 34 इंस्टॉलर्स के साथ हम विंडो डोर जो बनाते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं। विंटर ज्यादा दूर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में विंडो डोर बदलने की जरूरत है तो अभी फास्टेस्ट 4.5 वीक में हम जॉब कम्प्लीट कर देते हैं अक्रॉस ऑन्टारियो। सो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट
0: 416-732-3600 यश विंडोज एंड डोर्स का नंबर है। इस नंबर ते जाके तुसी इनफॉरमेशन कॉल करके एक्चुअली इनफॉरमेशन लो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है और डायरेक्ट तुसी उनां दे नाल डील करनी है, विचकार कोई मीडिएटर नहीं है, तो वेरी गुड प्राइस ऊपर तो गुड क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। ओके यश जी, आप लोकल GTA में ही सर्विसेज देते हैं या आउट ऑफ GTA भी अगर किसी ने करवाना हो तो?
1: सर्विस देते हैं, अभी कैलगरी शुरू हो चुकी है, वैंकूवर में शिपमेंट जा रही है, तो मोस्टली नेशन वाइड अब खुल रहा है, लेकिन अक्रॉस ऑन्टारियो पूरा ऑन्टारियो हमने कवर कर चुके हैं। हमारे 2 शोरूम्स हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं, तो पूरे ऑन्टारियो में हम सर्व करते हैं।
0: और इस टोरंटो में GTA में अपनी लोकेशन बता दें यश जी।
1: जी, हमारी 2 लोकेशन है, 185 कार्लिंग व्यू ड्राइव, यूनिट 6 इटोबिको, वहाँ हमारी फैक्ट्री है। अगर शोरूम में जाना है तो 8917 द गोर रोड, सब्जी मंडी के प्लाजा में, सब्जी मंडी के एग्जैक्ट सामने ही यश विंडोज का शोरूम है।
0: बिल्कुल जी, क्या बात है, जबरदस्त। 416-732-3600 ब्रैम्पटन वासियों तुहाडे लई इट्स अ गुड न्यूज और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि तुहानू टोरंटो ऑल द वे जाण दी जरूरत नहीं है। ब्रैम्पटन ईस्ट दे विच तुहानू ये सर्विसिज, एक्चुअली ब्रैम्पटन ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੌਰ ਰੋਡ, ਗੌਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ 416-732-3600 ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨ GTA ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਰੋਮ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰ, 732-3600। ਯਸ਼ ਜੀ, ਧਰਮ ਜੀ, ਸੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਜੀ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂੰ ਹੀ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਲਿਟਲ ਅਬਾਊਟ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਨੋਇੰਗ ਅਵਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਅਵਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲਡ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड। फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस,

स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-910-6000 416-910-6000 और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. Keep listening and keep smiling.

0: कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800
1: रिट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा

अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स। विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर, नॉट डीलर्स। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग शनिवार दी शाम दी महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून कर चुके हो जी थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारां नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी हां एंड खुशामदीद एंड स्वागतम

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हुई लग गई
0: हाँ
1: तू एवे कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ
0: बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किद्दां दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे गा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक पॉइंट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: जिन्हें
0: बच्चा ऑर्गेनाइज किया पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: हो वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना का काम करते होंगे ने दसी जरा मेनू
0: नहीं पावे कुछ भी दे दे ये थोड़ा
1: लेडीज ऑलवेज बच्चे भी देखन काम भी देखन घर भी देखन डॉलर भी देखन सारा कुछ देखन है हेलो
0: मैडम तू ना

0: पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ दी?
1: ओया पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनु मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी जी ने रिंगटोन ते नची जाना।
2: रोदाली
3: फिल्म रोन आली करना
2: वैसे मतलब काइंड ऑफ इद्दा दई।
3: अच्छा जी।
2: एक्चुअली पता कि ताइवान दे विच ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हुई है। उदे च की है जेडे प्रोफेशनल मूर्नर्स हुंदे ने, यानी कि जो लोग इद्दा खीरने पाउंदे ने उन्हां नू लेके जांदे ने लोग। जो किसी ने इद्दा दी कोई हैपनिंग हो जांदी है ना उत्थे जाके फिर जेडे प्रोफेशनल लोग ने ओह रोक के दिखाउंदे ने कि इद्दा रोना चाहिदा।
3: ओए होए होए होए
2: ए काम कर ला तू।
3: मतलब कहण ते
2: हां
3: कि भाई साहब बंदा सवेर तो लेके शाम तक कदी किसी दे भापे ली कदी किसी दे बाबे ली हां डाडा मारद रवे है। मतलब इत आके डिगे वेलो भाई है कोई मतलब अजकल तुम लगता है कोई ईमानदारी का जमाना है भलाई का जमाना नजर
2: आता
3: सलाह ले ली तो मैं आ करा डे तू पेट स्यापे करने शुरू कर देगा
2: पागला जो अगले वड्डा करना हो जलेबियां भी मिलनगियां
3: मेरी तो गल बीबी वाला काम है तेनू फिट बहना तू कर ट्राई नाले इतना सिर जहा सुट के लगी रही अगले पता लगना नाले रोंदी है कि हसदी है तू तो मैनू कोई प्रोफेशन नहीं दस्या ना मैं लभ ले एक
2: केड़ा
3: ह्यूमन स्केयरक्रो
2: ए तो तेरी पर्सनालिटी दे नाल भी जांदा है
3: क्यों
2: बिल्कुल इदा दा ह्यूमन स्केयरक्रो करो तेनू देख के तो वैसे ही बेचारे हार्ट फेल हो जावे भी है ये की है
3: कुछ भी है मैं वधिया लगा भी देखो ये डरना बन के तुसी खेतां च अगले दे खड़े रहो फुलवाड़ी च ते तुसी कां चिड़ियां डाउंदे रहो
2: बिल्कुल
3: है ना काम तां वैसे नहीं जा रहा
2: तेरे तो पर कोई बंदा नहीं डरदा कां चिड़ी मतलब
3: मेरी सुन गल कां चिड़ी ही डराउणे ते बंदे नहीं डराउणे नाले दूजी गल इह नहीं मैनूं समझ लगी वी भाई साहब जदों तुसी कां ही डराउणे आ ते सारा दिन उत्थे इक लत ते मतलब तुसी मतलब डरना जां बन के खलोते रहो उहदे नाल चंगा नहीं परां जा के छावें बहि जाओ
2: गोरे
3: लोग भाई साहब तदी दे कामयाब।
4: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
5: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.